मन में स्मरण करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जान नानक बल बल साध बल जाइया तेरा अंत ना पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरखा एक ओहंकार सतगुर प्रसाद।

आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जान जाना, हर गुण सद ही आख बखाण। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम सुमाया।

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बाधे कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी अस्थूला, सपर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पाट पाट की जान। जब उदकारख करा करतारा, प्रजात हरत तब देह पारा। जमिया करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आपे अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। रंकार नृब का निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत पेदा, जाकू पेव न पावत बेदा।

पाई को कह चाओ पाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुण तीन के हिज भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पूप संवाद्य 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मास आफ जून दोहरा

बैरियन संगारु प्रथम तरों भगवत को ध्याना बहर करो कविता बिदनाना कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो चूक होए काब ले सुधारो कबे बाच दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे हाँ जाग माहे जो तेह प्रभ को त्याए है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार कछ नाहे जल ते उपजत रंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा

तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठते हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की देह मो कोटक बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के तेरा विशास करोर जलेस दोहरा। राम कथा जुग जुगिया टल सब कोई पाखत नेत, सुरगबास रघुबर करा सगरी पुरी समेत। चाओ पई जो एह कथा सुने अरगावै, दुख पाप तेह निकट न आवै। बिसन भगत की ए फल होई, आद ब्याद छुवै सकै न कोई। सम्मत सत्रह सहज पचामन, हाड़ बदी प्रथम सुख दामन। तो प्रसाद कार ग्रंथ सुधारा, भूल परी लाहो लेहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुंग के चरण तार, सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो, राघुबर कथा प्रसंग दोहरा। साध असाध जानो नहीं, बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

या पाउड़ी तथा तू समराथा जिथा कोए नाहे ओथा तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छट जाहे पौदल बिख में सगाहो गुर सबदी पार पाहे। जिन काओ लगी प्यास अमृत से खाहे कलमह एहो पुन्न गुण गोविंद गाहे। सब सनो कृपाल सुमाले साहे साहे बिरथा कोय न जाए जे आवै तो दियाहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुरु आराधना जिहवा जाप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर सेती रते आदर गह पाईए ठाओ वहु नानक कृपा करे जिसनो एह वाथ दे जाग मह उत्तम काढ़िया हे विरले के ई के। महला पंजवा।

अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होय मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां,

अनसु सहज सुबाए दर्शन परसय गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जाबते दर्शन पेटे साधु।

0: आप सहते थे बैठो
1: जे मां पीछे त्रिखा महाना
0: ते नाले बचन करता के माता जे तानू किते त्रे लग जावे जादी लगे ना रहा जावे जे मेरे मगरों
1: लख है के होत प्राण की हाना
0: जे तानू महसूस होवे के मेरे प्राण निकल जाने पानी तो बिना
1: तो इस थल महे सूको ताल
0: जेड़ा इत अपने बिरसते नाल लागे तालाब है ना सुका होया पानी तो बिना है उस जगह ते
1: लोष्ट को उठाए तत्काल
0: उत्थे जाके ते एक मिट्टी दी टीम नू उठाना करियो
1: तहते जल को पीवन की जय
0: जदों तुसी उस मिट्टी दी टीम नू चुकोगे उहदे विचों पानी दा सोमा निकलेगा ते ओह तुसी पानी पी के प्यास दूर कर लैणी
1: प्राण बचाए आप दे लीजै
0: करके अपने प्राण नू बचा लेना जे एमरजेंसी लोड पवी तां
1: सो लोशट तहां टिकाव हो
0: फिर अपनी प्यास दूर करके प्राण नू बचा के ते ओहड़ी टीम जिथों चुकनी जिथों पानी दा सोमा निकलना ओनू उसे तरह टीम रख देनी ओनू लका देना है
1: चलियो ग्राम को जल हित ताए
0: इस तरह माता जी नू कह के ते भाई भगतू जी उस नगर नू चले जेड़े चार को ते हटवा जल लैण वास्ते
1: पुन सो लोशट तहां टिकाव हो
0: फिर दोबारा उससे जड़ी टीम चकनी उथे टका देनी है
1: नह दूसर के निकट जनाव हो
0: करके होर किसे नू ना पता लगे ए गल गुप्त रहनी चाहिदी है क्योंकि ए शक्ति है ना करामात दा वचन ही ते माता नू समझाता ते अपने पीण जोगा पानी छक के प्यास बुझा के ते ओ टीम नू मिट्टी दे नू उथे रख देनी है जो किसी नू ना पता लगे
1: अपन मात को इम समझाए
0: इस तरह माता नू समझा के ते भाई भगतू जी
1: चलियो ग्राम को जल हित ताए
0: फिर भाई भगतू जी उस नगर नू चले जेड़ा चार

काहो नानक जिन जामते काडे तेस गुर कै कुरबाणी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज साहिब जी दी साजी निवाजी। गुरु रूप खालसा साध संगत जी आप जी वडभागे हो। जो संध्या समय सतगुरां जी दी पावन हजूरी अंदर हाजरियां भर के महाराज जी दे दर्शन दीदार अमृत रूप गुरबाणी आरती आरता कथा विचार ज्ञानी गुरमेज सिंह जी बी ए उन्हां दे सत्कार योग ढाडी जथे पासों काम दे महान जरनैल दा इतिहास सुन करके महान लाह प्राप्त किया है। समुचियां संगतां वल्लों समूही जथियां दा धन्नवाद। सतसंग जी अज धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हां सवारिया पूरी होई करामात आप सृजन हारै धारिया सोढ़ी सुल्तान। धन धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी दे गुरता गद्दी पुरब हन। सवेर तों लै के विशेष तौर पर दीवान सज रहे हन। कल नूं श्री खंडपाठ साहिब आरंभ होणगे। ऐतवार भोग पाए जाणगे। उपरंत विशेष हफ्तावारी दीवान मौजूदा संघर्ष दे शहीद सिंघां नूं इस हफ्ते दे इतिहासक दिहाड़ियां नूं समर्पित सजणगे। ऐतवार 4 तरीक नूं सवेरे 10 बजे निशान साहिब जी दे चोले साहिब दी सेवा होवेगी। सो साध संगत जी आप जी ने हाजरियां भर के सेवावां करके लाहे प्राप्त करने जी। आप संगतां नूं इस खबर तों ज्ञात है जाणू हो कि जो पिछले समय दे विच श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों 225 पावन सरूप बिना खोज पड़ताल कीते आ गुरद्वारा सिंह सभा विखे समुंदरी जहाज दे विच कंटेनरां राहीं भेजे गए। 3-4 महीने का समा लग्या। रस्ते विच बहुत भारी बेदबी जिहड़ी आ महाराज दी होई है। सो सतसंग जी फिर ना समझदियां होइआं उस भुल नूं की बख्शाउणा सी होर भुल्लां कीतियां जो पिछले दिनी उही पावन सरूप होर शहरां दे विच भेजण दे वास्ते घरां दीआं आम जिहड़ीआं गड्डीआं ने उहनां दीआं डिग्गीआं विच पावन सरूप विराजमान कीते गए। पर गुरु के प्यारे सिंघां ने जाके उस समय वह पावन स्वरूप फिर तो गुरु घर विखे विराजमान किए गए। ये आप जी ने सब कुछ देखिया है। प्रताख नू प्रमाण की लोड़ नहीं है। सो साध संगत जीओ सिख संगतां वालों उत्थे विशेष तौर के उपर सवेरे 8 बजे तो लैके रात के 9 बजे तक अते जो जादियां संगतां शाम 6 बजे तो लैके 9 बजे तक महाराज के सत्कार के वास्ते भय के वास्ते रोस प्रदर्शन कर रही हैं। यो जो मंग है कि जो पावन 225 सरूप हैं उन्हों का पूरा वेरवा जड़ा है उस संगत अगे रखा जाए तो जो वार वार बेदबी हो रही है दिया भुला जन इस संगत अगे सतसंग जी बख्शाइया जा क्योंकि सतसंग जी ये जड़ी भुल हुई है बेदबी हुई है ये नाम बख्शन योग है। महाराज के पावन स्वरूप अपा कदाचित भी सतसंग जीओ डिग्गिया विच नहीं रख सकते। कदाचित भी महाराज के चंदोवा साहब प्रोपर जो सतसंग जी पूर्ण सेवा दे नाल ही महाराज के प्रकाश हुंदे ने वध तों वध आप जी पहुंचण की कृपालता करो। शनि एतवार आप जी नूं छुट्टी हुंदी है उस दिन भी वध तों वध हाजरियां भरो जी। आओ हुण अमृत रूप बाणी दे नाल जुड़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जमल जाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरुष विधाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरती जासी आनंद करहे तेरे दासा जब पूर्ण होई आसा। बिलावल महला पंजवा।
ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲਗਾਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨ ਆਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਉ ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ ਕਹੁ ਨਾਨੂ ਕਿਰਪਾ ਪਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਹੇ ਸਹਾਈ ਸਲੋਕ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁੱਟਾ ਹੇ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਈ ਹਦੂਤ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮਨ ਮਹ ਚਤਵਾ ਚਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਠਨੀਤ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਬੀਚਾਰੂ ਹਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਹੁ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੋ ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਾਉ ਕੈ ਸੋਹਿਲਾ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀ ਅੜੇ ਸੰਭਾਲੀਅਨ

मेरा सतगुरु जोगी। जो जो दिसे सो सो रोगी। जो भी दिखाई दे रहे है रोग दिखाई दे रहे है, रोग दे दर्शन होंदे ने। चल दे फिर दे मनुखां दे दर्शन नहीं, रोग दे दर्शन ने, रोगियां दे दर्शन ने। एक एक मनुख एक ऐसी तख्ती है जिस देते हजारां रोग लिखे हुए ने। पढ़न दी समर्था होवे मनुख खुद पढ़ सकदा है, वरना ये तख्ती खुद भी बोलन लग पैंदी है और खुद भी बयान करन लग। रूहे जमीन ते एक जो अपने नु खुद पढ़ के सुनांदी है, मैं दुखी हां ए रोग है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हर रोगां दी पंड है, दुखां दी पंड है, सिर्फ खोलन दी देर है। जरा जिया खोलिए सवाए दुखां दे होर कुछ निकलदा ही नहीं। दुख की पंडा खुलिया सुख ना निकस्यो कोय। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने हर मनुख दुखां दी पंड है, जरा खोलिए रंचक मात्र भी सुख लभदा नहीं, दुख है दुख है। इसी तरीके दे नाल महान दार्शनिक संत जो 2500 साल पहला है भारत दी भूमि विच होया, वैसे थे, नाम सिद्धार्थ सी, लेकिन बाद विच गौतम बुद्ध का कहलाया, उत्तम बुद्ध वाला, उत्तम सोचने वाला। दुनिया विच कुछ महापुरुष ऐसे होंदे ने ओ पिटी हुई लकीर दे हिस्से नहीं होंदे, उन्हां दे चलदियां ही लकीरां बनदियां ने। पिटी हुई लकीर तो मुराद अज तक जिना जिना रस्तियां तो जो सत पुरुष सत तक पहुंचे ने, उन्हां रस्तियां दा जो अनु

ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। अवतारी पुरुषानु सुखे सिद्ध जगत वल्लों कुछ उपनाम मिलते ने जिन्हों तखल्लुस कहते ने, कोई खासियत देख के कोई अहमियत देख के उन्होंने नाम दिता जाता है। समुची जिंदगी मर्यादा विच बजी हुई देख के जगत दे मुंह निकलिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिंदगी एक खेल है तमाशा है, जन्म नफा भी खेल नुकसान भी खेल जवानी भी खेल बुढ़ेपा भी खेल। जिसने ऐसा समझिया जानिया और जीविया देशवासियों ने उसनु कहा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। पर जिसने महसूस किया अनुभव किया जगत दुख है जगत रोग है जगत मिथे है जगत ते वगदे हुए हंजू ने जगत ते एक पीड़ा है एक वेदना है जो समस्त जगत दी पीड़ा नाल भर गया और बुलंद बांग कहन लगा जगत एक पीड़ा है एक दुख है एक रोग है और उस रोग दा समाधान लेके उस रोग दी औषधि लेके जिसने देश देशांतरां दा रटन कीता और रोगियां नु स्वस्थ करदा रहा समस्त दुनिया दी जबान तो ये शब्द बुलंद बांग बुलंद होया बाबा वैद रोगियां दा बाबा

0: Pocket.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 विच होया मिलता है, गुजरांवाला अजकल पाकिस्तान का इलाका है। सरदार महां सिंह पिता ने शुकरा चकिया मिसल दे आगू ते बीबी राज कौर दी कुख चों इस गांडीव सूरे का आगाज होया, जो जींदपत राजा गजपत सिंह की सपुत्री है। ये महाराजा रणजीत सिंह की वड्याई बड़ी प्रफुल्लित हुई, बड़े लकब असी उहदे लई चुने हुए ने। कोई शेरे पंजाब कहिंदा है, कोई सरकारे खालसा कहिंदा है, कोई लाहौर का बादशाह कहिंदा है, कोई पूर्व का नेपोलियन कहिंदा है, कोई पंज दरियावां का राखा कहिंदा है। ये सारे लकब गुरु की सेवा विच प्रफुल्लित होए ने। सतगुर सेविया वड्डी वड्याई, बस सर्विंग द ट्रू गुरु। पूरे गुरु की सेवा करन वाला जेड़ा है वो बड़िया बुलंदियां नू हासिल करता है। खैर बचपन का समा है, कोई देव ने तैसी हुई छोटी उम्रे चेचक की बीमारी लगी, खब्बी अख की जोत जांदी रही, चेहरे ते दाग पै गए। तुहानू पता है रोग इदां दा है, चिकन पॉक्स वगैरह। दुख सुख प्रालब्ध अनुसार मिलते ने। अज जिहड़ा बीजिया है इहदा फल कल नूं उगना है, चंगा जां माड़ा जो भी बीजोगे। तो इह ना समझिओ वी बीजिया उगदा नहीं हुंदा, समा लगदा है। सुख दुख पुरब जन्म के किए, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने इह पिछे जिहड़ा बीज बीजिया है उहदे अनुसार ही फल प्राप्त कर रहे हैं, चाहे सुख है चाहे दुख है। सो जाना है जिन दाते दीए। हुण उह क्यों समा लाउंदा है सुख दुख देण लगा बीज बीजण तों बाद, जां इह प्रालब्ध दी जिहड़ी खेड है, पिछले जीवन विच कीते कर्मां दी जिहड़ी खेड है, इह पिछला क्रैडिट अगे किवें नाल चल रिहा है वाहिगुरू जाणे। कई वार बंदे दा क्रैडिट खराब होवे जां चंगा होवे, जो एक बैंक विच है दूजे बैंक विच खाता खिलाओ तो उही रन करदा है। इत्थे शरीर बदल रहे ने, जो तो ही तुरी आ रही है, तो यह लेखा पता नहीं कदों तो चल रहा है, यह वाहिगुरू जानदा है। कोई ज्ञानी ध्यानी इहदा जवाब नहीं दे सकदा, कुछ गल्लां वाहिगुरू ने हथ च रखियां ने। महाराज कहिंदे किस को दोष देह तू प्राणी, सहो अपना किया करारा है। कहिंदे किसे नूं की दोष देना है, आपां कई वार दिंदे वी गुआंढियां ने साडा नुकसान करता, कौन किसे दा नफा नुकसान कर सकदा है। कहिंदे जो बीजिया है उही वढ रहा है। दद्दा है दोष ना देऊ किसै, दोष करमा अपणिआ जो मैं किया, सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जणा।

0: नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: वाह ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस अनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहो
0: साथ संग अग्न सागर तरहो
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरु पूरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चित्त हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूरन कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप त्रैलोक का निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
1: प्रगटे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सो प्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: आज जंजाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नवही खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तुत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊत पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ए फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम।

रूपे नमो सहसन भूपे नम दंदने नम मर्मने नम रोग रोगे नम अस्तंग स्नानंग नम मंत्र मंत्र नम जंत्र जंत्र नम इष्टे नम तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवास

नाम सर्व मंत्र नाम सर्व जंत्रांग नाम सर्व दृश्य नाम सर्व कृष्ण नाम सर्व रंगे त्रिपंगे या नंगे नमो जीव जीव नाम बीज बीजे

जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे कोई कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दरगे गुरसिख पहना।

उद्धतसे कबहु मिटहै नहि रे पछतायो। तत् विचार जहै मथरा जग तारन कौ अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु

गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। मनुख एक ऐसा जन्म है, सहजे सहजे मनुख कई तरह की होर जिंदगी नो जन्म देता है। मनुख दे अंदरों ही समाज का जन्म होया, मनुख दे अंदरों ही राजनीति का जन्म होया, मनुख दे अंदरों ही धर्म का जन्म होया। समाजिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, राजनीतिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने, और धार्मिक जीवन नो जन्म देता है मनुख ने। मनुख का जन्म होया, फिर मनुख ने समाज नो जन्म देता है, मनुख ने राजनीति नो जन्म देता है, मनुख ने धर्म नो जन्म देता है। राजनीति ते समाज नो इस वक्त ना ली, क्योंकि आप धार्मिक मंदिर दे बैठे हैं ते महान धर्म दे सागर, धर्म दे केंद्र धन गुरु हर राय साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। इस वास्ते गल ते धर्म दी करांगे। जिन्हां कोल धार्मिक जीवन है वो कोई करोड़ां च इक कद नहीं, हजारां च सैकड़ां च इक कद नहीं। जन नानक कोटन में किन्हो गुरमुख होए पछान, कोटन में नानक को नारायण जय जी। गुरु तेग बहादुर करोड़ां च कोई एक कद नारायण, जिस दे चेते दे चे नारायण, जिदी समझ दे चे। गुरुद्वारे बैठा है, गुरु दी गोद च बैठा है, कुछ भी नहीं पता है मेरा गुरु है ना। गुरु दी अजमत दा पता ना, गुरु दी महानता दा पता ना, गुरु दे ज्ञान दा पता। इस वास्ते अक्सर मैं ये दो बोल हर जगह बोलदा और हर वक्त बोलदा, जो मेरी समझ देच नहीं नहीं नहीं होवेगा। परमात्मा है, परमात्मा जर्रे जर्रे च है, रोम रोमे च है, होवे पिया, जो मेरी समझ देच नहीं नहीं है। दूसरा, जो मेरे चेते देच नहीं नहीं है, जो मेरी स्मृति देच नहीं नहीं है। होवेगा जर्रे जर्रे च परमात्मा, मेरी समझ च नहीं है। होवेगा रोम रोम दे च परमात्मा, मेरी स्मृति दे च नहीं है। दुनिया भर दे अवतारी पुरशां ने आख्या है, याद करो, चेते करो। संस्कृत च कहिंदे ने सिमरन करो, सिमरन करो, चेते करो, याद करो। इस वास्ते है मैं दोहरावां शब्दां नूं, असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुला सकते हैं, भुल गए हैं। भुलिया क्यों? समझ दे च नहीं। कहिंदे ने दो जगह ते परमात्मा नहीं है, उंज व्यापक है, सब जगह है, पर दो जगह ते नहीं है। केड़ी दो जगह ते नहीं है? समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं, बाकी सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जिथे रब नहीं है। पर फिर भी धार्मिक विद्वान कहने दो थावां ते नहीं है, बाकी सब जगह है। समझ दे च नहीं है, चेते दे च नहीं है। पशु दी जिंदगी दसदी है, इनू मां बहन दी समझ नहीं, इनू परिवार दी समझ नहीं। मनुख दी जिंदगी दसदी, इनू निरंकार दी समझ नहीं है, नहीं है। इहदा व्यवहार दसदा है, इहदी तर्ज जिंदगी दसदी है, इहदी जीवन शैली दसदी है, परमात्मा दी समझ नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे जन्म ते हो गए, ते हुण मैं इह वी अर्ज करां, जन्म बच्चे दी तरह हुंदा है। कदी कदी संसार विच कुछ इस तरह दे महान रूहां दा जन्म भी होया, जिन्हां नूं असीं कह सकदे हां बुढ़िआं दी तरह जन्म होया।
ਚੀਨ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਓਤਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਏ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਏ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਬਾਨੀ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਤੇ ਸਿਦਾ ਗਏ, ਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬਹੁਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ।

रटुत पिंगुरिया। तरले भरा एक शब्द जोदड़िया नाल लिबड़े आया, एक वाक बेनतियां दे प्रवाह जारी करदा होया, एक बचन पर समई अपनी हालत प्रभु दे अगों प्रगट करन वाला, ए महान शब्द धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा। अब कहने ने, हे प्रभु तू मेरी उंगल पकड़, क्यों मैं चल नहीं सकदा, क्यों नहीं चल सकदे। हे प्रभु मैं वो बच्चा जिसने आज ही चलना सीखे, और जिस बच्चे ने आज चलना सीखे है वो लंबी लंबी नहीं कर सकता। एक कदम चलेगा, दो कदम चलेगा, तीसरे से डिगेगा, लाजमी डिगेगा। लेकिन इतनी गल भी स्पष्ट है, जिस दिन बच्चा एक कदम पुटदा है मां नु खुशी हो जाती है, बच्चे नु चलना आ गया है, प्यो प्रसन्न हो जाता है बच्चे ने पैर पुटे ने। खुशी नाल मां बाप फुले नहीं समांदे। जद किसी धार्मन मनुख दी सुरत ध्यान प्रभु दे मार्ग ते चल पैंदा है, चलो एक कदम ही सही चलिया ते है। एक कदम चल चलना, एक कदम दा पुटना बड़ी वड्डी करामात है, बड़ी वड्डी बख्शिश है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान कर देने, चरण सरन गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेता है। तू एक कदम चलते सही, वाट लखा को दी है, चिंता न कर। कदम एक दी ही चिंता होनी चाहिए। अगर एक कदम किसी बच्चे ने पुटे है तो गल स्पष्ट हो गई, चलन दी जांच आ गई, ये चल पे। जिस दिन ये बच्चा तीन चार साल दा हो जाए ते पैर ना पुटे चले ना, मां नू चिंता हो जाती है, पिता नू पीड़ा हो जाती है, ले जांदे डॉक्टर कोलों, हो गया तीन साल दा, हो गया चार साल दा, पैर नहीं पुटता। तीन चार वरिया दा हो गया अजे इसकी जबान चो मां शब्द नहीं निकलिया। कहिंदे ने मां अखर सब तो पहले बच्चे की जबान चो निकलता है, मम्मा अखर पहले निकलता है, मां मां ये पहला करण लग पैंदा है। मां शुरुआत है और अखीर देच इस जबान चो अगर निकले वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, मां दा प्रत्यक्ष रूप ते प्रगट होया, मां मां मां दे छपे होया परमात्मा दा रूप वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अगर ये नहीं प्रगट होया तो बच्चा अजे बच्चा रह गया, बुजुर्ग नहीं होया। मां कहना आया है, वाहेगुरु कहना नहीं आया। जे मां निकले है अजे शरीरक जो मां सी उसका ना ते निकल आया, एदी जबान चो भावे मां ने नहीं आखिया मैं मां हां तेरी, लेकिन निकलिया प्रकृति इसके मुंह कढवांदी है। चाहे किसी की भाषा इंग्लिश होवे, परशियन होवे, अरबियन होवे, चाहे कोई हिंदी बोलता है, सिंधी बोलता है, पंजाबी बोलता है, दुनिया के तमाम बच्चों की जबान चो जो पहला अक्षर प्रगट आंदा है मम्मा ही आंदा है, मां मां मां। और जो जिंदगी का अंत होवे ते आखरी आखरी अक्षर ए होवे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जीवन यात्रा सफल हो गई, जगत ते आया सफल हो गया, मां ते निकलिया। और हर पीड़ा दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां, और मौत दे समय भी निकलिया हाय मां हाय मां। ये बच्चा बच्चा रह गया, अगे नहीं जा सकया। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु मैं बोलन दी जांच नहीं आई,
तेरे बोल मैं सुन सका, मेरे कोल कन भी कोई नहीं, मैं अपनी आवाज तेरे कन्ना तक पहुंचा सका, मेरी जबान नू अजे बोलन दी जाच नहीं आई। तेरे रस्ते ते मैं चल सका, वो पैर में कित्थों लियावां, हैगे ने मनुख कोल पैर, एक क्लब थिएटरां दे मार्ग ते चल देने, बाजार दे मार्ग ते चल देने, संसार दे मार्ग ते चल देने, कदी कदाई कोई कदम जो परमारथ दे मार्ग ते चलन। सतगुरु कहिंदे मेरे कोल वो हथ भी कोई नहीं जो तेरा दामन पकड़ सकन, हथ हैन मनुख कोल, कदी पुत्रां दा दामन पकड़िया, कदी पत्नी दा, कदी पति दा, कदी मां दा, कदी पिता दा, कदी मित्रां दा दामन पकड़िया, कदी भरावां दा दामन पकड़िया, कदी भैण दा दामन पकड़िया, कदी पड़ोसियां दा। हे प्रभु तेरा दामन पकड़ सका, अजे मेरे हत्थां दे चो सकत नहीं आई, अजे मेरे हत्थां दे चो पकड़ नहीं आई। हुंदा ते है हत्थां दे च कोई ना कोई दामन, हर एक दे हत्थां च हुंदा है, किसी दे हत्थे च मना लेना है, किसी दे हत्थे च पिता दा दामन है, उस दामन दे आसरे ते चल रहे, किसी दे हत्थे च भरावां दा दामन है, किसी दे हत्थे च पत्नी दा दामन है, पति दा दामन है, और किसी दे हत्थे च पड़ोसियां दा। कदी कदाई कोई कबीर जैसा, रविदास जैसा, रामानंद जैसा कह उठदा है, हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दे अगम्मे बोल, सबे साख कुड़ावे दिथे तो पल्ले तैदे लागी। उर्दू फारसी दामन कह देंदे ने, पंजाबी च पल्ला कह देंदे ने। गुरु नानक कहंदे ने हे प्रभु मेरे हत्थां च केवल तेरा ही पल्ला है। सफल हो गए हथ, तेरा पल्ला मेरे हथ च आ गया। महान हो गए ने हथ, तेरा दामन मेरे हथा च आ गया। ते जब तेरा दामन मेरे हथा च आ गया, हुण जिथे तू उथे ए दामन मेरे हथा च, ए पल्ला मेरे हथा च। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा ए महान वाक अध्यात्मक गहराइयां नू अपने विच छुपाई बैठा है, जिस नू उजागर करन दी मैं एक निमाणी कोशिश कर रहा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर, गरत परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन्ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। हे प्रभु ओ खूबसूरत नेत्र मैं कित्थों लियावां, जिहड़े तैनू वेख सकदे ने, इस तो ज्यादा होर कोई अखां खूबसूरत नहीं आउंदियां जिन्ना अखां दे च परमात्मा आउंदा है। वेखोगे अखां, किसी दी अखां दे च धन है, टपक रहा लोभ, किसी दी अखां दे च रूप है, टपक रही है वासना, किसी दी अखां दे च उसकी औलाद है, टपक रही है ममता, ममता ही दसदी पई है अखां दे च तियां पुत्तर ने, वाशना ही दसदी पई है अखां दे च रूप रंग है, क्रोध ही दस रहे है, ए लाल अखां ही दस रही ने।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
1: है।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुखे हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक के